सुरंग बगर में जाले मुंह खाली नहीं गिर पाए ये जरूर है जरूर है गरम को नहीं को मैं मैंने मत ही लिखा आने दे मलगन में बहुत दम तो मैं कर सकता हूं।